ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति.
1: Exactly 11 PM. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूं मैं. Oh life, I am not angry with you. I'm simply baffled. I'm distressed with your innocent questions. I'm not angry with your life. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. I never thought that to live, I would need to bear pain. मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज का उतारने होंगे. I never thought that I would have to pay to smile. मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होतों पे कर्ज रखा है. And now whenever I smile, it feels like these lips are full in death. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं. जिंदगी तेरे गम ने हमने रिश्ते नए समझाए. The sorrows of life have taught me new relationships. I found the comforts of shade under the bright scorching sun. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं. आज अगर बराई है बूंदे बरस जाएगी. Today my eyes will burst out the tears. Maybe tomorrow my eyes will long for them. Where have I lost that lone drop of tear which I had tucked away safely? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं. Oh life, I am not angry with you. I'm simply baffled. I'm distressed with your innocent questions. तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं. परेशान हूँ मैं. Let me play this one for Shakti and Rodney out there in Las Lomas.

Saying Sie dann once again, that is Sita Larkinder, aus den Montrose Chaguanas. And the Dolly Uncle Cox and Rina aus den Turit, Mashamati, Sita and once again, as we head to our message board, let's say Sita, to Mrs. Sukaraj Singh, in our company once again, just enjoying the music. Ravi, to you and the entire crew, closer to your destination now, I'm assuming. Safe one. To you, Auntie Bindi, Michael, Pandaravi, and Rishma. How about this one for you guys? As we head to the movie South End of 1983. जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा लाइफ लाइफ इज अ सॉन्ग ऑफ लव दैट एवरी हार्ट विल हैव टू सिंग लाइफ इज ऑल्सो एन ओशन ऑफ सैडनेस वील हैव टू स्माइल एंड क्रॉस इट जिंदगी एक एहसास है टूटे दिल को ही आस है Life? Life is an emotion. It is the hope of a broken heart. Zindagi ek banavas hai. Life is an exile. Everyone will have to go through it. Zindagi pyar ka geet hai. Zindagi bewafa hai to kya? Apne rote hai humse to kya? What if life is unfaithful? So what if our dear ones are upset with us? What if we are not holding hands, but still we'll have to fulfill being together? Zindagi pyar ka geet hai. Zindagi ek muskaan hai. Dard ki koi pehchaan hai. Life? Life is a smile. It is some identity of pain. Zindagi ek mehmaan hai. चोर संसार जाना पड़ेगा लाइफ लाइफ इज अ गेस्ट एंड वील हैव टू लीव द वर्ल्ड एंड गो वन डे जिंदगी एक प्यार का गीत है लाइफ इज अ सॉन्ग ऑफ लव इसे हर दिल को गाना पड़ेगा दैट एवरी लाइफ एवरी वन एवरी हार्ट हैज टू सिंग

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

भोले, जब कोई साथ नहीं आया तब तेरी मूरत ही रोशनी बनी, तेरा नाम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, बस मुझे अपनी भक्ति में डुबो लो प्रभु।

एक बार बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। डियर डिवोटीज सीताराम शुभ स्वागतम। वेलकम टू टीवी एंड रेडियो जागृति।

कपेत जंबो फल चारु भक्षणम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम सर्वा मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। ओम नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भास्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। नीलं भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पार्णो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम मनोज वंगमारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतांग वरिष्ठं वतात्मजं वानर युथ्य मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपदेम।

हारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक बाल बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सो डियर डिवोटीज, सीताराम वंस मोर एंड वेलकम टू प्रवचन। आई एम पंडित कापिले महाराज एंड इंडीड हैप्पी टू बी हियर दिस इवनिंग टू शेयर इन दिस वंडरफुल डिस्कोर्स दैट आई हैव प्लान फॉर यू। सो व्हाट डू? वी make all the necessary arrangements, we prepare ourselves, we sit in a comfortable position as I share with you these lovely teachings from the Sri Ram Charitramanas. So first, before we go into the golden pages of Sri Ram Charitramanas, we will all join together in the Sumiran. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.

करउ अनुग्रह सोय, बोधि राशि शुभ गुण सदनम, मोख होई वाचा पंगुचरहि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया

एक बाल बोलो श्री भगवान की जय. सो माय डियर डिवोटीज, वेलकम बैक. एज वी कंटिन्यू विथ अवर लवली डिस्कोर्स विथ दिस डिस्कशन बिटवीन सती जी एंड भगवान शिव, सती द डिवाइन स्पाउस ऑफ भगवान शिव, अबाउट दिस इन्विटेशन दैट रीच एवरीवन एल्स एक्सेप्ट लॉर्ड शिव एंड मदर सती. बृहस्पा हसन हमसन दुख माना, ते ही ते अनुज करही अपाना. नव विनु बोले जाहू भवानी, रहयन शील सनेह न कानी.